0: ये कोरे यमने सम कोच करी मेसिक मेसिक्स तो जो ये कोरे के दिन रे ये बिना राम बाबे ये कोच
1: करी मेसिक मेसिक्स रे किरासु रोंबर दा कुसु कोरा मेशो ने किरासु थग मारे किरासु नाल मेशो दा सलाम सम मेशो दा
0: मारे राम उने कुकुर बे आ मैं बाप रंगे थोंस गए मैं बास गए उन्हें मैं बाप ही ना फंदो ने जम चाचे ये तो बेसिंग बाय उसी
2: सीरी थीरो जने यक्षु मार्च पे आये ने तो सीरी थीरो जना चांगु चुक चीप सी
3: अच्छी पे पे पे पे जुझा रानी कंजो में चुमा शोधा जुझा शे वे अटुगे
2: हाँ तो अन्य लास कले ये मियो थी हम कहे मैं चास